0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा।

0: गुड इवनिंग माय डार्लिंग लिटिल रोशन्स. एक बार फिर से मंडे हैज रेज्ड इट्स अगली हेड एंड ऑन दिस फैंटास्टिक और मे बी नॉट मंडे आई हैव वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू. आपने बचपन में एक कहावत तो सुनी होगी, व्हेन यू लव समवन सेट देम फ्री, इफ दे कम बैक दे आर योर्स, इफ दे डोंट दे नेवर वर, ये सब. लेकिन मेरा इसे स्लाइटली डिफरेंट टेक है. इफ यू लव समवन ऑन दिस मंडे सेट देम फ्री, और अगर वो वापस आ गए दैट मीन्स नोबडी एल्स वांटेड देम और आपका टेस्ट इतना खराब नहीं है, सेट देम फ्री अगेन. ऑन दैट नोट, अगर आप किसी को ऑलरेडी सेट देम फ्री करके मंडे को सैटरडे संडे का लुत्फ ले रहे हो बिकॉज लाइफ इज सो ब्यूटिफुल एंड वीकेंड इवन एट द स्टार्ट ऑफ द वीक, हिट मी अप, वी नीड टू टॉक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE एंड आई एम द गर्ल हु सेज डाउन विद रेड फ्लैग्स. आज नहीं तो कल यू विल रियलाइज कि आपके अंदर मोर देन 10 ब्रेन सेल्स हैं, यूज देम. ऑन दैट नोट, इफ यू डू वॉन्ट टू फाइंड मी, द ग्राम एंड फेसबुक आर योर बेस्ट फ्रेंड्स. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड माय डार्लिंग, हिट मी अप एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
1: मिर्ची,

0: It's hot.
1: Mirchi. It's hot.

Mirchi. It's hot.

मेरे हिसाब से इस दुनिया में दो तरह के बंदे होते हैं. बंदे नंबर वन आर दोज पीपल जो एक्चुअली बहुत चार्मिंग होते हैं, लेकिन उन्हें इतने सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं दैट दे नेवर रियली फिगर आउट कि वो सच में काफ़ी क्यूट हैं. बंदे नंबर टू वो होते हैं जो चार्मिंग होते भी नहीं हैं और एक्चुअली देखने में भी कुछ खास नहीं लगते हैं, बट उनका USP यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि वो इतने श्योर होते हैं कि वो इतने चार्मिंग, इतने अट्रैक्टिव, इतने कॉन्फिडेंट OMG होते हैं दैट एक्चुअली उनसे लड़कियाँ पट जाती हैं. यू नो वाई? बिकॉज दे फेक इट सो मच दैट लड़कियों को लगता है अगर हमें इस बंदे में कुछ चार्मिंग नहीं लग रहा है तो गलती बंदे में नहीं, हम में है. और ये वही बंदा है जो जाकर पहले तो कॉलेज या ऑफिस में एक लड़की पटाता है, वो पट जाती है तो फिर इसी सिचुएशन को एक्सटेंड करते हुए वो अपनी सोसाइटी में ऐसा करता है. दो लड़कियां भी उसके लिए काफी नहीं होती हैं. द नेक्स्ट टाइम ही गोज टू अ पार्टी ही ट्राइज टू गेट इनटू अ हुकअप / वन नाइट स्टैंड सिचुएशन, जो इसके केस में सक्सेसफुल हो जाता है बिकॉज ये इतना कॉन्फिडेंट है अपने हॉट लुक्स के बारे में कि ये सबको कन्विंस कर देता है दैट ही इज द गाय ऑफ द मोमेंट. एंड मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ हु इज नॉट जस्ट इरिटेटिंग बट ही इज ऑल्सो सच अ नार्सिसिस्ट कि उसे लगता है कि इस दुनिया में अगर जॉर्ज क्लूनी के बाद कोई हॉट एंड सेक्सी है तो वो ये बंदा है. एंड इट इज सो अनोइंग AF, आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू. लेकिन अगर आपकी जिंदगी में आप ऐसे एक इंसान को जानते हो, आई थिंक हमें नोट्स कंपेयर कर लेने चाहिए. एंड टू डू दैट यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. वे टॉकिंग अबाउट अनोइंग AF मैन. ऑन दैट नोट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: मोहब्बत की तरह फिल्में भी कभी एक तरफ से नहीं चलती, उसके लिए दो लोग चाहिए होते हैं, एक जो कहानियां बनाते हैं और दूसरे जो उन कहानियों में अपनी जिंदगी ढूंढते हैं। हिंदुस्तान में फिल्में कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी, ये हमारे घरों में पली हैं, हमारी मोहब्बत में बसी हैं, हमारे दर्द में रोई हैं और हमारी खुशियों में नाची हैं। शायद इसलिए हम एक्टर्स को सिर्फ स्टार्स के रूप में नहीं देखते, कभी कभी हम उन्हें भगवान बना देते हैं। लेकिन हर रिश्ता एक इम्तिहान से गुजरता है और मुझे लगता है बॉलीवुड और उसके ऑडियंस का रिश्ता भी आजकल कुछ वैसे ही दौर से गुजर रहा है। मोहब्बत खत्म नहीं हुई है, लेकिन बेचैनी कहीं खोसी गई है। और मोहब्बत में सबसे खतरनाक चीज नफरत नहीं होती, बेपरवाही होती है। फिर भी जब कोई फिल्म या कोई गाना दिल से बनता है, हम उसे आज भी उतनी ही शिद्दत से अपना लेते हैं, इसी उम्मीद के साथ। लेट मी सुरेन सुंदरम स्टार ऑफ द मिर्ची टॉप 20, जो हिंदी फिल्म म्यूजिक का आईना है, द ट्रू मिरर, और व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट। और नंबर 20 पर वो गाना जो वक्त के साथ अपना बनता जा रहा है, यार इस फहीम अब्दुल्ला विद सैयारा।
3: नंबर 20

0: पिछले कुछ हफ्तों में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग हुई। दो स्पाई फिल्म्स लगभग एक ही दौर में हमारे सामने आई। एक थी धुरंधर और दूसरी थी अल्फा। याद है मैडी ने रिलीज से पहले एक बात कही थी,
1: मेरे सौभाग्य में ये रहा है कि मैं बहुत ऐतिहासिक फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ, बना नहीं लेकिन हिस्सा जरूर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ऐतिहासिक ये होने वाली है क्योंकि फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा।
0: उस वक्त ये स्टेटमेंट ओवर कॉन्फिडेंट लगा था, लेकिन अल्फा देखने के बाद मुझे लगा शायद वो इतना गलत भी नहीं था। धुरंधर ने स्पाइस को हीरोज नहीं प्रोफेशनल दिखाया है। उनके डिसीजंस में एक लॉजिक था, एक रिस्ट्रेंट था। अल्फा में मुझे लगा ग्लैमर ज्यादा था, ग्राउंड रियलिटी काफी कम। और जब स्पाई फिल्म में आप ऑथेंटिसिटी खो देते हैं तो टेंशन भी खो देते हैं। स्पाई फिल्म में सबसे बड़ा वीएफएक्स ऑथेंटिसिटी होता है। एक और बात मेरी समझ से बाहर है, वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स जिसकी पहचान कभी उसके म्यूजिक से भी होती थी, इस बार गाने आए लेकिन याद ही नहीं रहे। और बॉलीवुड में ये बहुत बड़ी वार्निंग होती है। अब देखना होगा स्पाई यूनिवर्स अपनी अगली चाल कैसे चलता है। फिलहाल नंबर 18 पर दूसरे हफ्ते में थोड़ा सा फिसलता हुआ दिस इज क्यू फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 12
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

यू नो समटाइम्स एक पुराना गाना जब वापस आता है वो हमें उस जमाने की याद दिला देता है जब उसे गाने वाली आवाज अपने करियर के पीक की तरफ बढ़ रही थी। इश्क अमीना इज टेकिंग अस बैक टू 2002, लेकिन मेरी नजर उस सोनू निगम पर है जो उससे पहले खुद को ढूंढ रहे थे। हर लेजेंड का एक गोल्डन पीरियड होता है, एंड सोनू जी के लिए वो पीरियड था व्हेन ही सैंग कल हो ना हो, मैं हूं ना, दो पल रुका, कभी अलविदा ना कहना, अभी मुझ में कहीं। लेकिन उससे भी खूबसूरत होता है उस लेजेंड के बनने का सफर। लेट्स रिवाइंड टू 1997, एक आवाज आई जिसने बताया कि बॉलीवुड को एक नया हीरो मिल गया है।

फिर एआर रहमान ने उस आवाज को आजमाया और सोनू जी ने साबित कर दिया कि मुश्किल कॉम्पोजिशन नाम की कोई चीज नहीं होती उनके लिए।

एंड उसके बाद आए कल हो ना हो, मैं हूं ना, अभी मुझ में कहीं, लेकिन मेरे लिए सोनू निगम का असली जादू उनके सुपरस्टार बनने में नहीं, उनके सुपरस्टार बनने के सफर में था। वैसे इस हफ्ते नंबर 11 पर है वाओ फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है, मगर मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक उसी दौर का एक गाना है जिसे सुनते ही लगता है मोहब्बत भी कभी एक तन्हा आवाज होती है। टॉप 20 रीवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 10।

0: एक हफ्ता हो गया है इस गाने को लूप पे सुनते हुए। वे जुनून फ्रॉम आवारा पंटू, इमरान हाशमी का माइनस टच और मिथुन का मैजिक। और जितना गाना सुना उतना ही लोगों को भी सुना, उनके कमेंट्स, उनकी कॉन्वर्सेशंस, उनका सोशल मीडिया। और मुझे एक बात समझ में आई, हम शायद वे जुनून को सुन ही नहीं रहे, हम उसकी कंपैरिजन अपनी यादों से कर रहे हैं। आवारापन की असली लेगेसी फिल्म नहीं थी, उसका म्यूजिक था और उनके साथ जुड़ी हमारी यादें। और ये कभी इम्पार्शियल नहीं होती, पर अब कई लोग कह रहे हैं कि इसमें सैयारा की झलक है। हो सकता है, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी तो है। जब हम किसी नए गाने को सुनते हैं, पुराने दिल के साथ सुनते हैं, उससे वही महसूस करना चाहते हैं जो 20 साल पहले किया था, लेकिन वो मुमकिन ही नहीं है। हर सीक्वल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहली फिल्म नहीं होती, उससे जुड़ी हुई यादें होती हैं, और उनसे जीतना लगभग नामुमकिन होता है। और अब देखते हैं क्या वक्त वे जुनून के साथ भी वही करता है जो उसने तो फिर आओ के साथ किया था। अनफॉर्चुनेटली अगला गाना आपके इमोशंस को उतना नहीं टटोलेगा, क्योंकि इसका नाम है चटनी। ये है फ्रॉम धमाल 4 एंड इस हफ्ते है नंबर 9 पर।
1: नंबर 9।

0: Another number two with the superstar who is back on his comeback trail. Bhoot Bangla ke baad ek aur smash hit. Welcome to the jungle and Akshay Kumar ke taare puri tarah badal chuke hain. Aur is gaane ke baad mujhe yaad aa rahe hain ek aur superstar by the name of Hrithik Roshan. Alpha release hue ab kuch hafte ho gaye hain aur jitni baatein film ki nahi hui utni Hrithik Roshan ki cameo ki hui. Wo aaye 2 minute ruke. और चले गए एंड तब मुझे लगा यार बॉलीवुड ऋतिक रोशन को अब थोड़ा कम समझने लगा है क्योंकि ऋतिक कभी सिर्फ एक्टर थे ही नहीं वो एक बेंचमार्क थे एक स्केल थे एक फेनोमेना थे आज भी ये सिर्फ एक गाना नहीं लगता ये एक जमाना लगता है और सोचिए ऋतिक रोशन का ये एक डांस स्टेप कुछ एक्टर्स के पूरे करियर से ज्यादा याद रखा जाएगा बस एक स्टेप इतना बड़ा था इसका इंपैक्ट ऋतिक रोशन वॉज द लास्ट बिग सुपरस्टार एंड अब 25 साल बाद बॉलीवुड ऋतिक रोशन को उस अंदाज में दिखा ही नहीं पा रहा है कैन यू बिलीव इट That war in 2019 was his last big blockbuster, and maybe that's why. मुझे लगता है कि Bollywood को फिर से उस scale के superstar की सख्त जरूरत है. मेरी नजर में और शायद आपकी नजर में सिर्फ दो लोग contenders हैं, रणबीर कपूर and रणवीर सिंह. और talent दोनों के पास है. They have some major acting chops. लेकिन अब बारी है अपनी legacy लिखने की. और इस वक्त इस रेस में जो फिल्म सबसे आगे खड़ी है उसका गाना दूसरे हफ्ते भी मिर्ची टॉप 20 का नंबर 1 सॉन्ग गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर
1: नंबर 1

0: हैंड्स डाउन इस काउंटडाउन का सबसे मैजिकल गाना, दूर दूर तक कोई कंटेंडर नहीं नजर आ रहा मुझको, एंड दैट मेक्स मी रियल हैप्पी। लेकिन इस हैप्पीनेस को यहीं एंड करना पड़ेगा, माय टाइम इज अप, पर जब जब मिर्ची डॉट 20 लगाओगे तब तब मुझे ही पाओगे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ghana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi.
2: ना किसी हीरो के बारे में ना किसी हीरोइन के बारे में, यहाँ वो गाने हैं जहाँ म्यूजिक ही असली मेन कैरेक्टर है. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. वो गाने जो किसी पिक्चर के लिए, डायरेक्टर के लिए, एक्टर एक्ट्रेस के लिए नहीं, आर्टिस्ट खुद अपनी कहानी सुनाने के लिए बनाते हैं, यानी द नॉन फिल्म पॉप सॉन्ग्स. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई री एंट्री है. हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है. ऑफ कोर्स अ स्पेशल शाउट आउट. ऑल दिस एंड मोर एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आके मेरे साथ कनेक्ट करो. कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10. हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लियर के लिरिक्स, सुनने की कॉम्पोजिशन. द सॉन्ग फीचर्स क्राउड फेवरेट एल्विश यादव. चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. साडी सोनस दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स पिछले हफ्ते से चार पोजीशन नीचे गिरकर दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. दोनों गाने बैक टू बैक. साडी सोनस नंबर 10, बैंगल्स ऑन नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 10.
3: हाओ चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे.

0: लाल लाल कलर ची बांगड़ी वांगड़ी यानी बैंगल्स, संजू राठौड़ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है बैंगल्स, उनका मराठी पॉप गाना ब्रेकिंग लैंग्वेज एंड बैरियर्स 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 गानिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स वन ऑफ दोज कोलैब्स जो आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड इन दोनों ने साथ में पहले कोई गाना नहीं किया, एंड नाउ जब आप ये गाना सुन चुके हैं, एवरीथिंग अबाउट दिस कोलैबोरेशन जस्ट मेक सेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट जसलीन रॉयल एंड बादशाह, उनका नया नवेला गाना इनाम, काउंटडाउन का अगले वाला गाना है। बट बिफोर वी प्ले द सॉन्ग, आई हैव टू टॉक अबाउट जसलीन रॉयल। वो इस म्यूजिक इंडस्ट्री की ऐसी आर्टिस्ट हैं जिनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। पिछले कुछ सालों से तो शी इज बीन गिविंग अस बैक टू बैक वायरल हिट्स लाइक हीरिए, ये गाना जसलीन ने कंपोज किया था, अरिजीत सिंह ने गाया है उनमें उसके साथ, देन ऑल्सो साहिबा विद स्टेबिन। दोनों गाने बिल्कुल वायरल, दोनों जसलीन ने कंपोज किए थे, बट यू नो जब हम किसी की सक्सेस देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि उनकी बिगिनिंग्स कैसी हुई थी। आई हैव हैड द प्रिविलेज टू स्पीक टू जसलीन, मैंने कई दफा उनके इंटरव्यू किए हैं, एंड हर बार आई हैव जस्ट मेट दिस इनक्रेडिबल गर्ल, अ टैलेंटेड म्यूजिशियन जो लुधियाना से मुंबई आई, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा के उन्होंने अपनी पहचान इस इंडस्ट्री में बनाई। आई हेट टू से इट बट वेरी वेरी फ्यू फीमेल कंपोजर्स हैव बीन एबल टू फाइंड देयर वॉइस। जहां जसलीन की आवाज सुनते ही हमें पता चल जाता है कि वो उनका गाना है, आई लव द कंपोजर दैट शी इज। आई एम श्योर इस गाने पे हर किसी ने फील्स लिए हैं।

इस गाने पे इतनी रील्स बनाई है आपने. दिस सॉन्ग इज ऑल्सो कम्पोज बाय जसलीन, सिर्फ गाया नहीं है उन्होंने. देन शेर शाह का रांझा जो बी प्राक ने गाया है वो भी जसलीन रॉयल ने ही कंपोज किया है. तो अब जब उन्होंने बादशाह के साथ ये गाना किया है, इट इज अ स्पेशल वन. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. जसलीन रॉयल बादशाह का गाना, गाने का नाम है इनाम. इट्स अ री एंट्री दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 8.

इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7 7 7

0: ऐश किंग की आवाज, गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाए, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 7 पर हमने ऐश किंग की आवाज में किनिया सोनी सुना, उससे पहले जसलीन रॉयल एंड बादशाह का गाना इनाम, जो की एक री एंट्री था ऑन गाना नंबर 8। जसलीन इज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत बड़े आर्टिस्ट के लिए फिल्म के गाने भी कंपोज करे और अपने नॉन फिल्म गाने भी उतने ही बड़े बना दिए। एंड इट्स नॉट एट ऑल एन ईजी फीट। कहीं ना कहीं मैं और आप वायर्ड हैं कि जब किसी बड़े अभिनेता अभिनेत्री या किसी बड़ी पिक्चर में कोई गाना आता है ना, तो हमें लार्जर देन लाइफ लगता है। हम सिंगर को भी याद रखते हैं, एक्टर्स को याद रखते हैं, कहीं ना कहीं हमेशा कंपोजर्स को भूल जाते हैं। बट कंपोजर एंड लिरिसिस्ट, दे आर द फाउंडेशन ऑफ एवरी गुड सॉन्ग जो हमें पसंद है। जसलीन इज अ कंपोजर बिहाइंड सॉन्ग्स लाइक
2: कहता कुछ और करता है और लेता है क्यों तू दिल पे जोर बदला बदला।
0: गली बॉय के साउंड ट्रैक से है ये गाना, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स इन द एल्बम एंड ऑफ जसलीन। खो गए हम कहाँ हो गया या शेरशाह का रांझा हो गया, ये बहुत बड़े फिल्मों के गाने उन्होंने किए हैं, बट उनकी म्यूजिक करियर का जिक्र आई थिंक हीरिये के बिना अधूरा है। एंड आई रियली बिलीव कि वो उनके करियर का सबसे बड़ा गाना है, फिल्म के गानों से बड़ा, किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस जिनके लिए उन्होंने काम किया उससे बहुत बड़ा, बिकॉज हर तरीके से पूरा क्रिएटिव डायरेक्शन विजन जसलीन का है। 2023 में गाना आया, अरिजीत सिंह ने उनके साथ इस गाने में गाया है, वीडियो में दलकर सलमान है। दिस सॉन्ग वॉज अ फिनोमेना, एक वक्त पर दुनिया का सबसे बड़ा गाना बनने वाला था। एंड जस्ट द फैक्ट दैट उनकी जर्नी, उनकी बिगनिंग्स कितनी हम्बल थी, ये सोच के आई ऑलवेज फील सो इमोशनल फॉर एवरी आर्टिस्ट, कि यही तो होते हैं वो फुल सर्कल मोमेंट्स जिनके लिए हम सब मेहनत करते हैं, इसीलिए हीरिये मैटर्स। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इफ यू आर समवन जो अपनी ड्रीम पे काम कर रहे हैं, एक दिन उसको अपना हीरिये मोमेंट जरूर मिलेगा। जसलीन रॉयल, अरिजीत सिंह की आवाज, जसलीन की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है हीरिये, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

जसलीन रॉयल अरिजीत सिंह की आवाज में, एक गाने का नाम है हीर। ये सुन के ही मुझे ये बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है ऑफ सोशल मीडिया कोर्स। आई रिमेम्बर एक साल पहले हर स्क्रोल में सिर्फ यही गाना बजता था। Now back to the countdown, अगले बार एक गाने की बारी। आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना, गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडिया टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 6।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाए, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। तो कोई गाना रेकमेंड करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। चलो काउंटडाउन पर अब आगे बढ़ने से पहले वक्त की सुई थोड़ी पीछे घुमाते हैं। आंखें बंद करके एक सीन इमेजिन करो। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो बस मेंटली इमेजिन करो, आंखें रोड पर। छोटा सा कमरा, एक पुराना टेप रिकॉर्डर और वो क्लिक वाली आवाज जब आपने कैसेट अंदर डाली और आपका फेवरेट गाना ऑन। कोई स्किप बटन नहीं है बॉस, गाना सुनना ही है क्योंकि गाना हमको बहुत पसंद है। दीज आर द सॉन्ग्स जिन्हें हम क्लासिक्स कहते हैं। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के वही आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं जिनको सुन के हमें इंडी पॉप से मोहब्बत हुई। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

0: कभी।
1: And the song we're going to feature this week is
2: आँखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना।
1: गाने का नाम है आंखों में तेरा ही चेहरा बाय द बैंड आर्यन। साल 1999 में ये गाना रिलीज हुआ। आवाज जय वालिया की है। इस गाने को सुन के मुझे वही जमाना याद आ जाता है जब प्यार बहुत सिंपल था। कोई लफड़ा ही नहीं था कि सीन पे छोड़ दिया, ब्लू टिक नहीं आया, ऑनलाइन है या नहीं है। कोई तरीका ही नहीं है ये पता लगाने का, तो आप बस ख्याली पुलाव बना रहे हैं अपने दिमाग में। जो स्टेजेस ऑफ लव होते हैं ना, उसमें इन्फैटुएशन सबसे प्यारा होता है। जब पेट में वो प्यारी प्यारी बटरफ्लाईज उड़ रही हैं, जब दिमाग में हम सिर्फ उनसे मिलने के सपने देख रहे हैं या उनसे जब मिले थे उसके बारे में सोच रहे हैं। एंड दिस सॉन्ग एग्जैक्टली कैप्चर्स दैट कि आंखों में तेरा ही चेहरा, आई एम थिंकिंग अबाउट यू ब्रो। दिस इज द काइंड ऑफ लव जो हर लड़की चाहती है कि किसी लड़के को उससे हो जाए। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इट्स टाइम टू फील दैट ओल्ड स्कूल लव। जय वालिया की आवाज में आर्यन द बैंड का गाना दिस इज आंखों में तेरा ही चेहरा ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

यार व्हाट अ सॉन्ग दिस इज, जय वालिया की आवाज, दिस इज आंखों में तेरा ही चेहरा. यू नो जब दिल कच्चा था और प्यार सच्चा था, ये उसी जमाने का गाना है. एट आरजे करेगा और इंस्टाग्राम पर आओ, मुझे बताओ ऐसा 90s 2000s का गाना जो आज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ क्विकली एक इंडी पॉप क्विज. आंखों में तेरा ही चेहरा में एक बहुत बड़े हिंदी फिल्म एक्टर हैं, बट उनकी पहली मूवी से पहले ही वो इस गाने में फीचर हो चुके हैं. जल्दी जल्दी बताओ दुबला सा पतला सा प्यारा सा लड़का कौन है जो आंखों में तेरा ही चेहरा में फीचर हुआ था. एट आरजे कनेक्ट और इंस्टाग्राम पर आके बताओ. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, हर आर्टिस्ट के दिल की कहानी. गाने का नाम है अर्ज किया है. पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग हैज बीन ऑन अ काउंटडाउन फॉर 25 वीक्स एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू. अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
2: हेलो मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। नाउ गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था हर्ष नुसी का साडी सुन। देन संजू राठौड़ का बैंगल्स दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। एक री एंट्री हुई है जसलीन रॉयल एंड बादशाह का गाना इनाम ऑन गाना नंबर 8। एश किंग का किनिया सोनी दिस वीक ऑन गाना नंबर 7। उसके बाद गाना नंबर 6 पर आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का कोक स्टूडियो सॉन्ग कॉल्ड ए अजनबी। Loving this song, Anish Sarkar, Hriday ka gana, Udi Udi on gana number 5. Then Diljit Dosanj ka Dealer on gana number 4. Anoop Jain ka arz kiya hai, Still Going Strong, this week on gana number 3.
3: Kaayare jo the, wo shayare bane.
2: The top 2 songs of the week, एक quick shuffle हुआ है, एक गाना ऊपर एक गाना नीचे। मिट्टर और की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन अलॉन्ग विद स्वरा वर्मा, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। एंड द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, एक बार फिर से एक पोजिशन ऊपर जंप करके बंजारे का गाना बैरन, दिस हरियाणवी सेंसेशन ऑफ अ सॉन्ग, 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। Baron is this week on Gana number 1. Ye dono gaane back to back, Shisha on number 2 and Baron on number 1, only on Gana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
0: Number 2.

Avicii. It's Hot

0: Energy. It's hot.
1: Na jiya zindagi ek pal bhi tujhse.

Mirchi. It's hot.

ba da ba da ga ma ri ri ri ri sa ga ma ga sa ga ma ba da ba da ni sa.

0: गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड ये अभी अभी शुरू हुआ है, तुम्हारा ऑफिशियल शो जहाँ पे तुम्हें बॉलीवुड की गॉसिप, फील गुड वाइब्स, गर्मा गर्म चाय से ज्यादा गर्मा गर्म खबरें फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड ढेर सारे बॉलीवुड बैंगर्स मिलते हैं। देखो, लाइफ का स्नूज बटन जो है ना, वो सिर्फ अलार्म पे अच्छा लगता है, ड्रीम्स पर नहीं, काम पर नहीं। तो चाहे तुम फिलहाल किसी भी सिचुएशन में हो, मन नहीं कर रहा काम करने का, या फिर अभी भी थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे हो, गेट अप एंड गेट मूविंग, बिकॉज लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है, तो तुम क्यों रुकोगे। और अगले कुछ घंटों में तुम्हें मिलने वाला है म्यूजिक जो तुम्हें पुराना नॉस्टैल्जिया तो देगा, लेकिन आगे के फेवरेट सॉन्ग्स भी बताने वाला है। थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी बातें और ढेर सारी गुड वाइब्स के साथ शुरू करते हैं मिर्ची मॉर्निंग आज का शो। और अब मुझे फॉलो करो जाकर, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। मेरा नाम है प्रिसिला, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई, बजा।

गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और सुन रहे थे मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और आज है 21st of July एंड लेट्स फाइंड आउट आज के दिन हिस्ट्री में क्या स्पेशल हुआ था। सबसे पहले चलते हैं 1798 में इजिप्ट, नेपोलियन बोनापार्ट ने बैटल ऑफ द पिरामिड्स में अपनी स्मार्ट मिलिट्री स्ट्रेटजी से मामलुक आर्मी को हरा दिया। फिर 1861 में अमेरिका में फर्स्ट बैटल ऑफ बुल रन, जो सिविल वॉर की पहली बड़ी लैंड बैटल बनी, ये हुई थी। 1954 में जिनीवा कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ और फर्स्ट इंडो चाइना वॉर ऑफिशियली एंड हुआ। वियतनाम दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था। और फिर आया वो मोमेंट यानी कि 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर पहला कदम रखा। इमेजिन व्हाट अ बिग फीट फॉर ह्यूमन काइंड। 1993 में कोलकाता में डेमोक्रेसी के नाम पर प्रोटेस्ट के दौरान जान गंवाने वाले लोगों की याद में आज शहीद दिवस भी मनाया जाता है। और 2008 में सालों तक फ्यूजिटिव रहने के बाद राडोवान कराचिक को अरेस्ट किया गया टू फेस

0: Mirchi, it's hot.
1: Let's go crazy.

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची वॉच इट।
0: सब लोग पूछ रहे हैं कि अरे रॉड्री ने तो एक गोल भी नहीं मारा ना ही असिस्ट दिया, फिर वर्ल्ड कप का गोल्डन बॉल कैसे जीत लिया। सिंपल है, फुटबॉल सिर्फ गोल्स का गेम नहीं है, इट्स आल्सो अबाउट द प्लेयर जो पूरी टीम का इंजन बन सकता है। स्पेन के कैप्टन रॉड्री ने टूर्नामेंट में 747 पासेस कंप्लीट किए विद एन इनक्रेडिबल 93.4 एक्यूरेसी। मतलब इतनी टू द पॉइंट एक्यूरेसी कहां मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो 1803 प्लेयर्स में इन्वॉल्व रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, सबसे ज्यादा टचेस, सबसे ज्यादा टैकल्स और डिफेंसिव पावर रैंकिंग्स में भी नंबर वन। बेसिकली हर जगह रॉड्री ही रॉड्री छाए हुए हैं। तो लेसन ऑफ द डे है, कभी कभी असली हीरो वो होता है जो स्पॉटलाइट में कम और इम्पैक्ट में सबसे ज्यादा होता है, फॉर ऑल द राइट रीजंस। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, थोड़ी सी देर में मिर्चीदार गाने आने वाले हैं तुम्हारे लिए। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में। और चलो अब देखते हैं कि आज मदर नेचर क्या कह रही है, यानी कि वेदर का क्या हाल चाल है। अभी बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 70 degrees Fahrenheit और स्काई जो है वो थोड़ा सा क्लाउडी है, लेकिन अम्ब्रेला को आज वर्क फ्रॉम होम मत देना। दोपहर 1 से 2 के बीच में रेन एक्सपेक्टेड है और 2 बजे के आसपास थंडरस्टॉर्म्स भी आ सकते हैं। मतलब आज लंच ब्रेक में बाहर जाने का प्लान एकदम कैंसिल कर दो। आज का टेम्परेचर रेंज रहेगा 69 to 83 degrees Fahrenheit, विच इज हाई ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक कल के जैसा, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से फील लाइक टेम्परेचर थोड़ा और ज्यादा फील होने वाला है। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, फ्लड वॉच इज इन इफेक्ट टिल वेंसडे 2 AM, बिकॉज आज 27 millimeters की बरसात एक्सपेक्टेड है। सो प्लीज कैरी योर अम्ब्रेलास विथ यू, सन प्रोटेक्शन SPF 50+++ के साथ वाला लगाओ और लेयर के प्लेयर बनो। और फिलहाल जाकर मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।
1: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ एंड वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स का आवर नंबर टू, जहाँ पर अब हम सुनने वाले हैं सबसे पहले नीट यूजी पेपर लीक इशू पर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एनडीए पार्लियामेंट मीटिंग में कहा है कि सरकार स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है। उन्होंने पेपर लीक को घोर पाप बताया है और कहा है कि जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, साथ ही फ्यूचर में ऐसे लीक्स रोकना सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने कहा। नंबर टू पर स्टूडेंट लेड ग्रुप कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट के बाद फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा है कि अगर गवर्नमेंट या पुलिस बात करना चाहे तो डिस्कशन जंतर मंतर में हो। ग्रुप ने अपनी डिमांड्स अथॉरिटीज को सबमिट कर दी है और एजुकेशन रिलेटेड अकाउंटेबिलिटी की भी बात उठाई जा रही है विद डिमांड फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। नंबर थ्री पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की है आफ्टर क्लेम्स दैट अ 12-year-old गर्ल वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट मार्च। कमीशन ने अथॉरिटीज को चाइल्ड को लोकेट करके जरूरी मेडिकल हेल्प देने को कहा है, साथ ही ये भी कहा है कि अगर क्लेम गलत पाए जाते हैं तो उसके लिए भी अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाएंगे। दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर के 3 विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड मैंने तुम्हारे गानों पर फुल स्टॉप इसीलिए लगाया क्योंकि गाने की एक बात बताने वाली हूँ मैं तुम्हें, एक्चुअली सिंगर के बारे में। अरिजीत सिंह इज ऑफिशियली बैक टू प्लेबैक सिंगिंग। याद है जब उन्होंने इस साल जनवरी में प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट अनाउंस की थी, वो मैंने तुम्हें बताया था। फैंस के कलेक्टिव रिएक्शन थे, यार ये कौन सी प्ले लिस्ट है, कौन सा प्लॉट ट्विस्ट है, कैसे जियेंगे, ब्रेकअप के थ्रू कैसे सर्वाइव करेंगे। वेल, गुड न्यूज ये है कि अरिजीत सिंह इज रिटर्निंग विद द सॉन्ग ये आवारापन फॉर नन अदर देन इमरान हाशमीज अपकमिंग फिल्म आवारापन 2। वंस अगेन टीमिंग अप विद फिल्म मेकर विशेष भट्ट और सॉन्ग रिलीज हो रहा है आज यानी कि 21 जुलाई को। सच बताऊं, बॉलीवुड विदाउट अरिजीत सिंह वॉइस फील्स लाइक चाय विदाउट अदरक। है तो चाय लेकिन मजा नहीं आ रहा है। अब देखना ये है कि गाना कितने टाइम तक लोगों के लेट नाइट प्ले लिस्ट या ब्रेकअप प्ले लिस्ट का या किसी भी प्ले लिस्ट का हिस्सा बना रहता है या फिर परमानेंटली सिर्फ शावर कॉन्सर्ट में बना रहेगा। What do you think about it? Let me know. DM करो मुझे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, that is MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244। फिलहाल stay tuned and stay hard।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और सबसे पहले एक बिग फैट हैप्पी बर्थडे टू यू, जो भी आज अपना हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, सारे लोगों को ढेर सारी विशेस, ढेर सारा सक्सेस, ढेर सारा प्यार। चाहे ऑफिस जाना हो, समर क्लासेस जाना हो, या फिर बस घर पर केक का सेकेंड स्लाइस फिलहाल खा रहे हो, आज तुम्हारा दिन है। सो स्माइल बैक थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइड एंड कैलोरीज को काउंट मत करो आज के दिन, एटलीस्ट हम तो यही मान के चलते हैं। तो अब तुम्हारे बर्थडे को तुम किसके साथ शेयर करो? सबसे पहले वी गॉट द हार्टथ्रॉब फ्रॉम द अर्ली 2000s, जॉश हार्टनेट, साथ में जूनो टेम्पल, एंड वी ऑल्सो हैव रोमियो सैंटोस, द किंग ऑफ बचाटा, एंड द लेजेंडरी कैट स्टीवंस या यूसुफ इस्लाम, जिनकी टाइमलेस म्यूजिक आज भी जनरेशन को कनेक्ट करवाती है। और बर्थडे गैंग में है कॉमेडियन जॉन लॉविट्स, एक्टर सिंगर शार्लेट गेंसबर, सुपर मॉडल सैरा सैम्पायो और एक्टर रोरी कल्किन। ये सब आज तुम्हारे बर्थडे स्क्वाड में शामिल है। ऑफ कोर्स एज इज जस्ट अ नंबर, असली टेंशन ना कैंडल को केक पर लगाने का होता है। मुझे अपने बर्थडे विशेस और शाउट आउट भेज सकते हैं तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Mirchi. It's hot.

0: गुड, मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब सुनने वाले हो गोल्ड का लेटेस्ट रेट।
1: विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड रीडिंग एट $4,060, $4,060 पर ट्राउंस के साथ आज गोल्ड की प्राइस थोड़ा सा बट ट्रेंड पर है। राज ज्वेल्स के साथ आके गोल्ड में इन्वेस्ट करें, जहां 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, सर्टिफाइड कलरलेस डायमंड ज्वेलरी एंड GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड्स आपके लिए 0% जीरो डाउन पेमेंट के साथ बहुत इजी फाइनेंसिंग 9 मंथ बिना किसी हिडन फी की ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। आप अगर अपना पुराना गोल्ड ट्रेड करना चाहें, बेस्ट रिटर्न एक्सचेंज वैल्यू जिसमें आप अपना पुराना सोना कैरेटोमीटर के साथ टेस्ट कराते हुए ज्वेलरी की एक्सचेंज वैल्यू फुल 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस एक्सचेंज में ले जा सकते हैं। ज्वेलरी कहीं की भी हो, किसी भी कंट्री, किसी भी ज्वेलर से खरीदी हो, राज ज्वेल्स के साथ आप एक्सचेंज कर सकते हैं। आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स की टीम के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग।
0: तो सुना तुमने गोल्ड का लेटेस्ट रेट अपडेट मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। फटाक से मुझे जाकर फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: she gets hot.
1: Mirchi, it's hot.

हाय, गुड मॉर्निंग. मैं हूँ प्रिस्सिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची आवर का 3 ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. सबसे पहले टेंशन्स बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव एस्केलेटेड फर्दर. ईरान्स प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान डिस्क्राइब द सिचुएशन एज अ फुल स्केल वॉर. वाइल मिलिट्री एक्शन हैज कंटिन्यूड ऑन बोथ साइड्स, द पेंटागन सेज अराउंड 100 यूएस सर्विस मेंबर्स हैव बीन इंजर्ड इन स्ट्राइक्स since early July, with most having returned to duty. It's a fast-moving situation and officials continue to monitor developments. Number two, per social activist Sonam Wangchuk, who has been on a hunger strike for students in India, received relief from the Delhi High Court. The court says he might be shifted to a hospital of his choice. A doctor told the court that his current medical condition is being monitored. And number three, per India may need paper leak ko lekar protests or discussion कंटिन्यू किए जा रहे हैं. स्टूडेंट ग्रुप एंड कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से पार्लियामेंट मार्च के बाद अपनी डिमांड्स अथॉरिटीज तक पहुंचाई है. इस बीच अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स और पब्लिक फिगर्स ने अपने रिएक्शन दिए हैं, जबकि डायलॉग और अकाउंटेबिलिटी की बात अभी भी सामने आ रही है. एंड द डिस्कशन अराउंड द नीट पेपर लीक कंटिन्यूज इन इंडिया. स्टूडेंट्स लेड प्रोटेस्ट हैव ड्रॉन लार्ज क्राउड्स इन दिल्ली एंड सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड सेवरल पॉलिटिकल leaders and public figures have expressed their views. Meanwhile, authorities and political representatives continue discussions and the matter remains under public and legal scrutiny. Leader of opposition Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi protest outside PM Narendra Modi's house and demand his resignation. And that's it for Mirchi Hour Ka 3. Main hu Prisala tumhare saath mein. Connect with me Insta or X pe. Mera handle name hai Mirchi Pris and WhatsApp ka number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: ऑलराइट, स्टॉप स्क्रॉलिंग एंड अब यूनिवर्स का मैसेज सुनने का टाइम आ चुका है। मेरा नाम है प्रिसिला, दिस इज राशि जोन पार्ट वन ऑन मिर्ची मॉर्निंग।
2: मिर्ची राशि जोन
1: यानी कि मेष राशि, आज लाइफ तुमसे कह रही है न्यू रोड ट्राई करो, सेफ ऑप्शन टेम्पटिंग लगेगा लेकिन नया पाथ ही नए डोर्स खोलेगा। लकी कलर फॉर यू इज ब्राइट येलो, लकी नंबर इज 11। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, दूसरे की प्लेट में डिजर्ट हमेशा बड़ा लगता है लेकिन आज तुम्हें रियलाइज होगा जो तुम्हारे पास है वो भी काफी स्वीट है। ग्रेटिट्यूड ऑलवेज विंस। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 24। जेमिनी यानी मिथुन राशि, एक दोस्त का क्रेजी आइडिया आज गोल्ड माइन बन सकता है, सुनो सोचो और फिर डिसाइड करो, कभी कभी व्हाट इफ भी वाओ बन जाता है। लकी कलर फॉर यू इज एक्वा ब्लू, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, अट्रैक्टिव ऑफर मिल सकता है लेकिन फ्री चीज सिर्फ माउस ट्रैप में होती है, फाइन प्रिंट जरूर पढ़ लेना स्पेशली मनी मैटर्स। लकी कलर फॉर यू इज अल्यूमिनियम एंड लकी नंबर इज 16। लियो यानी कि सिंह राशि, आज तुम्हारा ब्रेन फुल HD मोड में है, एक ब्रिलियंट आइडिया आ सकता है तुम्हें और जब भी वो आए उसे नोटबुक या नोट्स ऐप में रेडी रखो। ओरिजिनलिटी इज योर सुपर पावर। लकी कलर फॉर यू इज रेड, लकी नंबर इज 33। वर्गो यानी खनिया राशि, कंफ्यूज हो चिल, डायरेक्शन मिलने वाली है, बस ओवरथिंकिंग का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करो, GPS ऑफ द यूनिवर्स इज रिकैलकुलेटिंग, जस्ट हैव पेशेंस। लकी कलर फॉर यू इज वायलेट, लकी नंबर इज 8। And that's it for मिर्ची राशि जोन पार्ट वन। बाकी की बची 6 राशियों को लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में, तब तक के लिए तुम मिर्ची दार बैंगर सुनो और जाकर मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: वेलकम बैक टू मिर्ची राशी जोन पार्ट टू. मेरा नाम है प्रिसला एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स.
1: मिर्ची राशी जोन.
0: लिब्रा यानी कि तुला राशि, क्रिएटिव प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ. सेफ मत खेलो यार, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा केओस क्रिएट करो. इट विल क्रिएट स्पार्कल इन योर लाइफ. कभी कभी रिस्क ही स्टैंडिंग ओवेशन लाता है. लगेगा फॉर यू इज पीच. लकी नंबर इज 27. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट थिंकिंग वो भी बहुत जरूरी है. आज अपनी इंट्यूशन को इग्नोर बिल्कुल मत करो. तुम्हारा सिक्स्थ सेंस जो है वो ओवर टाइम पर लगा हुआ है. लगेगा फॉर यू इज मरून. लकी नंबर इज 41. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. फोकस ही आज का मैजिक वर्ड है. वन टारगेट एंड फुल पावर. लकी कलर फॉर यू इज सनशाइन येलो. लकी नंबर इज 9. केप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, कोई न्यूज पहले थोड़ी सी नेगेटिव लग सकती है लेकिन स्टोरी का सेकेंड हाफ अभी बाकी है मेरे दोस्त. पॉजिटिव एंगल ढूंढो, प्लॉट ट्विस्ट आ सकता है तुम्हारी लाइफ में. लकी कलर फॉर यू इज नेवी ब्लू. लकी नंबर इज 18. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, गुड वाइब फाइनली नॉक कर रही है तुम्हारे दरवाजे पर. अच्छी चीजें आ रही है तुम्हारी लाइफ में, तो गिल्ट को लीव पर भेज दो यार. यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ हैप्पीनेस दैट्स कमिंग योर वे. लकी कलर फॉर यू इज टील. लकी नंबर इज 36. पाइसीज यानी कि मीन राशि, थोड़ी एंजाइटी फील हो सकती है बट डोंट यू पैनिक बेबी. आज की मेहनत कल का सेलिब्रेशन बन सकती है. फ्यूचर यू विल एक्चुअली थैंक द प्रेजेंट यू. लकी कलर फॉर यू इज पीच. लकी नंबर इज 14 एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची राशि जोन पार्ट टू. मेरा नाम है प्रिसला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स. फटाक से मुझे फॉलो कर लो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

वो भी हॉलीवुड से। मार्वल की एवेंजर्स डूम्सडे ने रिलीज के पहले ही बॉक्स ऑफिस को सुपर हीरो पंच मार दिया है, वो भी हल्क के हाथ से। एडवांस बुकिंग्स के सिर्फ 12 घंटों में ही फिल्म ने 10.5 मिलियन डॉलर्स की प्री सेल्स कलेक्ट कर ली है। और ट्विस्ट देखो, उस वक्त 10% से भी कम शोज बुकिंग के लिए ओपन थे। मतलब इमेजिन करो, जब पूरा थिएटर खुल जाएगा, टिकट काउंटर्स पर बोला जाएगा कि भाई लाइन लगाने के लिए भी लाइन लगा लो। और हाँ, मूवी का रन टाइम भी कंफर्म हो गया है, 2 hours and 45 minutes की ये मूवी है। तो December 18th 2026 को पॉपकॉर्न बड़ा लेकर आना, क्योंकि मार्वल वाले क्लियरली कह रहे हैं कि बाथरूम ब्रेक्स कम एट योर ओन रिस्क। और इसी नोट पर मेरी तरफ से अभी के लिए एक ब्रेक, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। अगर आज की मस्ती, गॉसिप और गुड वाइब्स तुम्हें पसंद आई हो तो मुझे फॉलो करो अगर तुम्हारा मन हो तो। मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। प्रेस अला की तरफ से टाटा बाय बाय, यू बी गुड, खाओ पियो ऐश करो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: एक बात बताओ, बचपन में क्या आपका भी ख्वाब था कि आप बड़े साइज वाली चॉकलेट्स खाओ?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. आपको याद है ads में there used to be chocolates bigger than the usual, और मैं हमेशा चाहती थी कि यार इतना बड़ा चॉकलेट का जो स्लैब है ना, ये खाने को मिल जाए। पर जो एड्स के बड़े वाले चॉकलेट बार्स हुआ करते थे ना, वैसे दुकान पर कभी नहीं दिखते थे। लेकिन थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन, वी डू गेट टू सी बिग बिग चॉकलेट बार्स ऑन सिलेक्टिव स्टोर्स, जो आज भी जब देखती हूँ ना तो दिल बड़ा एक्साइटेड हो जाता है यार। वो अलग बात है कि यार बचपन में इस चीज़ को लेकर मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत चाहती थी कि मैं इतनी बड़ी चॉकलेट स्लैब्स खाऊं, लेकिन अब बड़े होने के बाद मैं कभी नहीं खरीदती इतने बड़े चॉकलेट स्लैब्स। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस बचपन का ख्वाब स्टिल अधूरा होना इज कि अब जब ये बड़े साइज के चॉकलेट्स मिलने लगे हैं ना, तो कैलोरीज और शुगर इनटेक का ज्ञान भी तो भरपूर आ गया है मार्केट में। और बस ये बड़े वाले चॉकलेट बार्स की जो भूख है, ये आज भी अधूरी है। और आपसे बात करते करते मुझे रियलाइज हो रहा है यार कि इसे ऐसा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान ने कहा है कि किसको पता कल हो ना हो। मैं क्यों वेट कर रही हूँ कि जब मैं एक सर्टन साइज पे पहुंच जाऊंगी तब मैं वो चॉकलेट बार खाऊंगी? आई थिंक आई शुड जस्ट डू इट। आप क्या बोलते हो, वेट नहीं करना चाहिए ना? बस तो फिर आज ही कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोर पर जाकर ना इसको खरीदने की कोशिश करते हो। बाकी आप मुझे बताना जरूर, हाँ, डीएम करके और माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, कि क्या आपको भी ऐसे शौक चढ़ा करते थे बचपन में कि यार ये बड़ा वाला चॉकलेट बार मैं भी खाऊं? बताना। अभी के लिए मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को गियर में डाल रही हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बस तुम रहते हो।
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आजकल तो बहुत स्टैंड अप कॉमेडी शोज आने लगे हैं यार, लेकिन क्या आपको इंडिया का पहला साइलेंट कॉमेडी टेलीविजन शो पता है कौन सा था? आओ चलो बताती हूँ।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड सब टीवी पर एक कॉमिक माइम शो शुरू हुआ था जिसका नाम था गुटुरगू। अब जब मैं बोल रही हूँ ना तो शायद आपको ये बात याद आ जाए, क्योंकि मुझे भी ये शो जो है ना कहीं अपनी सबकॉन्शियस में ही याद था जब तक इसका जिक्र नहीं हुआ था। एंड देन आई रियलाइज्ड कि अरे हाँ, ऐसा शो तो हम देखा करते थे, जिसमें देयर वाज अ सुनील ग्रोवर एंड शीतल मलिक, जहां सुनील ग्रोवर ने बालू कुमार का कैरेक्टर प्ले किया था।

एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो रिवॉल्व्ड अराउंड दीज कैरेक्टर्स जो कि एक टिपिकल इंडियन हाउसहोल्ड में सेट होते हैं और वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो जीते चले जा रहे हैं, लेकिन उस जिंदगी में जो खट्टी मीठी चीजें होती चली जा रही है, हंसी ठहाके लगते चले जा रहे हैं, वो किसी को सुनाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर आप इस शो के टाइम पर अपना टीवी म्यूट भी कर दो ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इस शो के अंदर कॉमेडी पूरी की पूरी एक्सप्रेशन और जेस्टर्स के थ्रू ही पोर्ट्रे की जा रही थी, एंड आई एम श्योर दैट माइट बी वेरी वेरी टफ फॉर द एक्टर्स। ये शो जो था ये 3 सीजन तक चला, 189 एपिसोड्स टोटल इसने कंप्लीट किए, एंड इट इवेंचुअली बिकेम द लॉन्गेस्ट रनिंग साइलेंट कॉमेडीज एज वेल ऑन इंडियन टेलीविजन, क्योंकि इसके बाद मालेगांव का चिंटू करके भी एक साइलेंट कॉमेडी फॉर्मेट में शो आया था, लेकिन गुटरगू जो है वो इवेंचुअली पहला वो शो बना जो कि साइलेंट कॉमेडी टेलीविजन शो था। एंड सुनील ग्रोवर ने एक इंटरव्यू में खुद ये बात कही थी कि उनके एक्टिंग असाइनमेंट्स में से सबसे टफ वॉज गुटरगू दिस शो, बिकॉज ये शो पूरा का पूरा एक्सप्रेशंस पर ही रिलाई किया करता था, कोई पंचलाइंस कोई डायलॉग्स नहीं थे इस शो के अंदर, और एक्टर्स अक्सर मिरर के आगे अपने एक्सप्रेशंस रिहर्स किया करते थे सो दैट परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग और फेशियल क्यूज जो है वो निकल कर आए। एंड अनलाइक द रेस्ट ऑफ द सिटकॉम्स, इस शो का जो एक एपिसोड था वो एक या दो दिन के अंदर नहीं शूट हुआ करता था, बल्कि 3 से 4 दिन लगा करते थे एक एपिसोड को शूट करने के लिए, क्योंकि हर एक एक्सप्रेशन और रिएक्शन इतना इम्पॉर्टेंट था कि उसकी टाइमिंग सही हो, उसके अंदर ह्यूमर हो, कि यार बार बार टेक्स लेने पड़ जाते थे, और इस वजह से जो शूट टाइम था वो लंबा खिंच जाया करता था। लेकिन साउंड इंजीनियर्स जो थे वो इस शो के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, मोर देन द राइटर्स, हाँ, क्योंकि उनको वो कॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करना, वो साउंड इफेक्ट क्वर्की साउंड इफेक्ट्स देना, एट द राइट टाइम बैकग्राउंड क्यूज देना, वो सबसे ज्यादा जरूरी था, जो कि सिर्फ और सिर्फ साउंड इंजीनियर्स ही कर सकते थे। मान गए बॉस, हमारे इंडियन टेलीविजन ने अब तो कह सकते हैं कि क्या नहीं एक्सपेरिमेंट किया है, एक साइलेंट कॉमिक शो भी एक्सपेरिमेंट किया है। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिशन कश्मीर जब शूट हो रही थी तो देयर वाज दिस टाइम जब शूट के दौरान सोनाली कुलकर्णी जो है वो डर के मारे बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। अब हुआ यूं कि सोनाली ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन लोगों को सीन्स मिला करते थे तो वो सीन जिस जिस जगह पर शूट होते थे उसी नाम से उस सीन का नाम हो जाया करता था। जैसे कि बालकनी में शूट हो रहा है तो बालकनी सीन, ड्राइंग रूम में हो रहा है तो ड्राइंग रूम सीन। अब एक सीन उनके पास एक दिन ऐसा आया जिस पे लिखा था बेडरूम सीन। सोनाली एकदम से चौंक गई कि बेडरूम सीन, और फिर जो मेकअप आर्टिस्ट थी उसने सोनाली को कहा कि भाई तुम तैयार हो यार, हो वैक्सिंग वैक्सिंग करवा रखी है तुमने, तो अच्छी सी मैक्सी वैक्सी पहननी होगी कोई सिल्क वाली, क्योंकि ये बेडरूम सीन है। सोनाली और ज्यादा नर्वस हो गई कि यार ऐसा सीन मुझे करना पड़ेगा संजय दत्त के साथ। इवेंचुअली जब ये सीन शूट हो रहा था एट दैट टाइम संजय दत्त ने सोनाली कुलकर्णी का ये जो अनकंफर्टेबल होने वाला बॉडी लैंग्वेज था ना वो नोटिस कर लिया, क्योंकि सोनाली बिल्कुल भी इन हर एलिमेंट नजर ही नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद संजय दत्त ने सोनाली को अपने पास बुलाया और कहा बेटा देख तू इतनी नर्वस हो जाएगी तो मैं भी ये सीन नहीं कर पाऊंगा, और सीन में एक किस भी नहीं है तो तू नर्वस क्यों हो रही है। तब जाके सोनाली कुलकर्णी को थोड़ी जान में जान आई और इवेंचुअली ये सीन बहुत बढ़िया गया। और वैसे भी इस सीन में कुछ था नहीं, सिर्फ और सिर्फ नोकझोंक थी जिसमें पति बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा था। हाउ स्वीट वॉज दैट यार। इसीलिए तो कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और सोनाली ने यहाँ से ये भी सीख लिया होगा कि नेवर जज अ सीन बाय इट्स टाइटल। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: यार आज अगर हमें किसी बंदे के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करनी है ना, तो यार एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। डेट पता करते करते ये पता लग ही जाएगा, कितना लंबा प्रोसीजर है ना भाई। स्कूल में तो हम अपने क्रश के नाम के साथ फ्लेम्स खेल लिया करते थे एंड लाइफ वाज सॉर्टेड। हमें सब पता लग जाता था कि यार शादी किससे होगी, प्यार कब होगा, और बच्चे ये तो मुझे याद नहीं।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। स्कूल में आपने फ्लेम्स खेला है क्या? क्या खतरनाक थे भाई हम, अपने क्रश के साथ खतरनाक अंदाजे एक गेम के जरिए लगा लिया करते थे। हम दोस्तों में ना जब फ्लेम्स खेलते थे तो हम लोग तो जब बंदे का नाम लिया करती थी ना, तो हम सारी की सारी लड़कियां ऐसे शर्माती थी जैसे कि कोई दुल्हन शर्मा रही हो। वी यूज्ड टू ब्लश यार। हंसी आ रही है मुझे आज सोचते सोचते कि जिस लड़के के नाम से हम फ्लेम्स खेला करते थे ना, आज उसका लाइफ में नामो निशान तक नहीं है। एंड इंटरेस्टिंगली स्कूल में भी कुछ हुआ गया नहीं, कॉज माता पिता का खौफ इतना था भाई कि कहीं उनको पता लग गया ना तो माता पिता हमें पीटा पीटा करके नीला कर देंगे। और आज वक्त ये है कि जब शादी को हाँ बोलने में हम देर कर रहे हैं ना, तो खुद ही माता पिता आकर पूछ लेते हैं कि यार लाइफ में कोई है तो बता दो, हम खुद उसके घर वालों से जाकर बात कर लेंगे। आज हमारे घर वाले भी खुद कहते हैं कि एक नजर में भी प्यार होता है। तुम बहुत ज्यादा जजमेंटल हो यार सारा। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: जस्सी की आवाज में दिस आइकॉनिक गाना फ्रॉम हिज एल्बम। एंड वेल, बचपन से हम इस गाने को सुनते आ रहे हैं और हमें पता था कि यार गुजरात की कुड़िया जो है वो दिल ले जाती है। लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं गुजरात में पहुंची तो मुझे पता लगा कि यहाँ की सिर्फ कुड़िया ही नहीं, यहाँ का तो क्विजीन भी आपका दिल ले जाता है। यार क्या खाने यार गुजरात में, ओ हो, एक बार आप शुरू हो जाओ ना तो ख़त्म होने का नाम नहीं लोगे, अनटिल एंड अनलेस आपका पेट चीख चीख के बोलेगा कि बस कर जाओ यार, अब तो रहम करो। इट्स दैट क्रेजी, इफ़ यू नेवर ट्राइड इट यू शुड ट्राई गुजराती क्विजीन, आई स्वेयर। चलो अब खाने की बात तो बहुत हो गई है, गाने की बात करते हैं।
1: सारा
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड विद दिस लेट्स जस्ट से अ यस टू मान ना मान करो गानों की पहचान, जहां पर दो गानों के मिक्सेस को मैं मिक्स करके आपके लिए सुना देती हूँ, चला देती हूँ और आपको पहचानना होता है कि ये मिक्स कौन से दो गानों के हैं। तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यू।

बस जी, अब आपको डीएम करना है ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि ये दो गाने कौन से हैं, और स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का फिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: सुनील शेट्टी ने कभी कुणाल खेमू के साथ भी काम किया था, आपको वो फिल्म याद आई?
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अगर आपको वो फिल्म नहीं याद आई तो मैं आपको याद दिला दूं, उस फिल्म का नाम है भाई, स्टारिंग सुनील शेट्टी, जिनके एक भाई थे कुणाल खेमू इन द फिल्म, विच वॉज अ छोटू सा लड़का एट दैट टाइम। और इस फिल्म में पूजा बत्रा और सोनाली बेंद्रे भी थी, और इसी फिल्म का एक गाना था ये।
3: सजनी

वेल, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस गाने की चर्चा मैं क्यों कर रही हूँ. बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये गाना ओरिजिनल नहीं है बॉस. एक्चुअली ये गाना तमिल की फिल्म कर्णा के एक गाने से कॉपीड है.

अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है कि 90s या अर्ली 2000 का कोई ऐसा गाना या मूवी कहीं से कॉपीड है तो डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मैंने प्यार किया कि एक्ट्रेस भाग्यश्री को तो सब याद रखते हैं। उन्होंने हालांकि ज्यादा फिल्में की नहीं और एक हिट फिल्म उनकी मैंने प्यार किया जो हमें हमेशा याद रह गई। और आज भी जब हम भाग्यश्री को देखते हैं ना तो यही सोच रहे होते हैं कि यार मैंने प्यार किया को रिलीज हुए तो बहुत साल हो गए यार, इनकी एजिंग कब रिवील होने वाली है।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये cute सी भाग्यश्री, आपको पता है मैंने प्यार किया है के बाद इन्होंने शादी कर ली थी अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड हिमालय के साथ, जो आज उनके हस्बैंड है। एंड इनफैक्ट आज भी ये कपल जो है ना, ये काफी इन लव दिखाई देता है, टच होट टच होट। लेकिन एट दैट टाइम जब इन दोनों ने शादी करी थी ना, तो ये बड़ी ड्रामेटिक सी शादी थी, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल। क्योंकि हुआ ये था कि भाग्यश्री की जो फैमिली थी उन्होंने इनकी इस शादी को अप्रूवल नहीं दिया था, जिसकी वजह से इनको अपनी फैमिली के बिना ही शादी करनी पड़ी थी। और भाग्यश्री की तरफ से आपको पता है कौन मौजूद था उनकी शादी में? सिर्फ सूरज बड़जात्या की फैमिली एंड हिमसेल्फ एंड सलमान खान। ये दो पार्टीज थी जो भाग्यश्री को रिप्रेजेंट कर रही थी थ्रू आउट उनकी शादी में, यानी कि ये लड़की वाले थे। एंड दिस इज सच अ क्यूट थिंग यार, फ्रॉम द रील टू द रियलिटी। दिस वॉज दैट मोमेंट जहाँ पर कलीग से दोस्त बनते हैं और दोस्त से रिश्तेदार बन जाते हैं और रिश्तेदार से रिश्तेदारी भी निभाते हैं। एंड इनफैक्ट मैंने प्यार किया कि जब शूट चल रही थी एट दैट टाइम ऑल्सो सलमान खान न्यू की भाग्यश्री और हिमालय जो है दे आर डेटिंग ईच अदर। तो वो भाग्यश्री को हिमालय के नाम पे इतना छेड़ा करते थे, इतना छेड़ा करते थे कि बेचारी परेशान हो जाया करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो मैंने प्यार किया वाली फ्रेंड्स वाली केमिस्ट्री है ना, वो वहीं से आया करती थी। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: बर्थडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर बचपन के ख्वाब,
2: यादों को चिट्ठी।
1: यार, सब बड़ों को आजादी से अपनी जिंदगी जीते हुए देखकर हमने बचपन में हमेशा यही सोचा कि वाह, बड़ा होना कितना कूल है। और पूरे बचपन हमने यही दुआ की कि ऊपर वाले हमें जल्दी से बड़ा कर दो, बस जल्दी से बड़े हो जाएं हम। बड़े होंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एक्टर बनेंगे, सिंगर बनेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे। लेकिन जब बड़े हुए ना हम बचपन के ख्वाब, तो रियलाइज हुआ कि अब इन सारी चीजों की जरूरत महसूस नहीं होती। ये तो अल्टीमेट गोल है ही नहीं। किसी ने हमें बचपन में ये क्यों नहीं समझाया कि बड़े होकर जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो होगा खुद के लिए वक्त, सनसेट देखते हुए चाय पीना, दोस्तों के साथ ट्रिप टालना नहीं सफर तय करना, तारों की छाँव में घंटों बैठना, चांद से बातें करना, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। अब समझ आया कि ये भागम भाग और हसल वाली लाइफ नहीं, सुकून जिंदगी का मोटो है। और बचपन के ख्वाब, मैं भी बदल गई हूँ और तुम भी बदल गए हो। क्योंकि क्या है ना कि मैंने अपने ख्वाब की डेफिनेशन जो है उसको बदल दिया है, जिसके चलते मैंने तुम्हें भी बदल दिया है। तो अब तुम बचपन के ख्वाब नहीं हो, अब तुम लड़कपन के ख्वाब, जिसमें मुझे आसमान की ऊंचाई नहीं छूनी है लेकिन मुझे जमीन पर बैठे हुए आसमान में लगे हुए तारों को ताकना है। मेरे भी ख्वाब बदल गए। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गया, बीजू शाह का कंपोज किया गया ये गाना इज कैसेट के साइड बी का पांचवा गाना।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: द गाना फ्रॉम द फिल्म गुप्त, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू। यार गुप्त का ना पूरा का पूरा एल्बम, सारे के सारे गाने वो जस्ट माइंड बॉगलिंग, बिकॉज ये जो म्यूजिक था ना वो जब तब आया था तब भी बड़ा हटके था और आज तक भी मैंने ऐसा म्यूजिक तो नहीं सुना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई मीन इफ यू थिंक डिफरेंटली देन डू लेट मी नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुप्त जैसा म्यूजिक जो है ना वो आज तक भी मैंने नहीं सुना है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो फॉर श्योर, बिकॉज ये तो कुछ हटकर ही लेकर आए थे यार ये लोग। एंड इस फिल्म के गाने कुछ ऐसे हैं कि सिंस ये एक थ्रिलर थी और रोमांटिक थ्रिलर थी, तो इस फिल्म के गानों में रोमांस तो है ही है, लेकिन जो रोमांटिक गाने भी चल रहे हैं ना उनका जो म्यूजिक है, देयर इज समवेयर सम थ्रिल इन दैट म्यूजिक। वो थ्रिलर मूवी का भी म्यूजिक लग रहा है साथ साथ, लेकिन ये बुरा भी नहीं लग रहा है, ये कॉम्बो बड़ा सटीक लग रहा है। That is the magic which Viju Shah did with the composition of this music. And पुराने गानों में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि बात को ना सीधे से नहीं कहा जाता था कि हमें तुमसे मोहब्बत है, बात वहीं खत्म हो गई। नहीं नहीं नहीं नहीं, बात को ना थोड़ा सा घुमा फिरा कर कहा जाता था, जैसे कि इस गाने में लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, और कहा गया है कि यार तू हो कोई फूल तो तुझे चुरा लूं मैं, अपनी जुल्फों में लगा लूं मैं, पलकों के नीचे छुपा लूं मैं, और तू हो कोई जाम तो उड़ा लूं मैं, और अपनी प्यास बुझा लूं मैं। And I really, really liked the lyrics from those times because of the reason कि यार बात कही भी और नहीं कही भी, और सीधी भी नहीं गई, टेढ़ी मेढ़ी गई, और हमें ना टेढ़ी मेढ़ी बातें जो है ना वो बड़ी पसंद आती है, ये बात तो है। हाँ लेकिन यही कहीं अगर जब लड़ाई हो जाती है और तब कोई टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा होता है तो वो कतई ना पसंद आती है, बट या व्हेन इट्स अबाउट रोमांस, सीधी बात अगर ना की जाए और ऐसे टेढ़ी मेढ़ी घुमा फिरा के बात की जाए, उलझा उलझा के बात की जाए, तो ज्यादा मजा आता है। वो कहते हैं ना कि इश्क जब धीमी आंच पे पकता है तो उसका जायका ही कुछ अलग निकल कर आता है। चलो जी मैं यहाँ से जाते हुए आपसे कहती हूँ, हम हराई प्यार के लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते, लेकिन आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। Take care of yourself and stay tuned.

0: मौसम बेईमान या फिर गर्लफ्रेंड परेशान या फिर पति है हैरान या फिर ढूंढना है नया मकान या आज फिर से बंद है दुकान। कोई भी सिचुएशन हो इनके पास गाना रेडी है साहेबा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। हिंदी फिल्मों के वो लिरिसिस्ट जिन्होंने ऑलमोस्ट हर सिचुएशन पे गाना लिखा हुआ, आनंद बख्शी साहब। लिखने गाने का, गाने लिखने का बचपन से ही शौक था इनको। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था इन्होंने।
1: मुझे बचपन से ही कुछ गाने का शौक था, मैं गाता वाता था और ड्रामा वगैरह में रामलीला में कुछ करते थे और पिक्चरें देखने का बहुत शौक था। और फिर कभी कभी हम स्कूल की किताबें भेज के भी टिकट लेके पिक्चर देखते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शौक बढ़ता गया। फिर ये शौक कब लिखने में बदल गया इसका कुछ मुझे ठीक से एहसास नहीं है। और बचपन से ही मैंने ये सोच लिया था कि कभी ना कभी किसी दिन मैं बम्बई पहुँचूँगा और मैं गीतकार बनूँगा। दिल में सोचा हुआ था कभी गाना गा लेंगे, गाना नहीं मिला तो गीत लिख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन बॉम्बे ही जाके रहेंगे।
0: बख्शी साहब अपनी फौज की नौकरी छोड़ के बॉम्बे आ गए थे, फिर गिव अप करके वापस भी चले गए थे, लेकिन फिर वापस आ गए थे, बॉम्बे से दूर नहीं रह पाए थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची 98.3 मिर्ची इट्स हॉट पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: हिंदी फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड लिरिसिस्ट्स मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आनंद बख्शी साहब आपको पता है इंडियन आर्मी में थे। एक बार एक पुराने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि भाई बचपन से उनको जब लिखने गाने का शौक था तो वो फौज में क्यों चले गए थे, सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: वो कुछ मेरे हालात ऐसे थे कि हम हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त ऐसे कुछ हालात हो गए कि मुझे लिटरेचर की तरफ मैं नहीं जा सका, क्योंकि फौजी जिंदगी में लिटरेचर के लिए बहुत कम वक्त और माहौल होता है। तो जब फौज में था तब भी मैं अक्सर रात को हमारे फील्ड एरिया में दूर दूर तक लाउड स्पीकर लगे होते थे, तो मैं उनके नीचे खड़ा रहता था और जब वहाँ से वो किसी भी गीतकार का गीत बजाते थे और बोलते थे कि अब सुनिए ये रचना फलां गीतकार की है, तो मेरे दिल में एकदम एक हुक सी उठती थी कि या अल्लाह कभी ऐसा भी दिन आएगा किसी स्पीकर से मेरा नाम भी लिया जाएगा कि आप सुनिए आनंद बख्शी की रचना।
0: तो चलिए देरी नहीं करते, बख्शी साहब की ये खूबसूरत रचना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: रेडियो मिर्ची के साथ।
2: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: ये जो गाना है ना तिरछी टोपी वाले, इसका एक सैड वर्जन है जिसके लिरिक्स में ऐसी कुछ लाइन है कि मैं गांव का सीधा साधा बलम कहां मैं आ गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, एंड उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब वो अपने लिखने गाने के सपने पूरे करने बॉम्बे आए तो थोड़े घबरा गए। सुनिए पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: बॉम्बे का सफर, फौज से मैंने नौकरी छोड़ के बॉम्बे आया ना, कोई 50 में मैं आया पहली बार, और मैंने यहाँ बड़ी कोशिश की कि मुझे बिल्कुल कामयाबी नहीं हुई, और एक दो महीने में ही मैं ये कसम खा के कि मैं दोबारा कभी नहीं आऊँ, वापस चला गया। और फिर जाकर मैं फौज में भर्ती हो गया, और इस दौरान में मैंने कोशिश की कि कोई ऐसी वजह पैदा कर लूँ कि मैं दोबारा बम्बई नहीं जाऊँ। तो मैंने शादी भी कर ली, मेरे बच्चे भी हो गए, क्योंकि फिर भी मैं रुका नहीं, और दो तीन साल की नौकरी करने के बाद मैंने कहा चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा, और मैं फिर बॉम्बे आ गया। दिस वाज द एंड ऑफ 1956।
0: इसके बाद इनको बॉम्बे में स्टेबल होने के लिए कुछ 6-7 साल लग गए थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

Mitchie, it's hot. पुरानी चीज, आनंद बख्शी स्पेशल, चारों के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: सौ रबदी क्या ही टैलेंटेड बंदा था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और मैं बात कर रही हूँ हिंदी फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड लिरिसिस्ट्स आनंद बख्शी साहब की। बख्शी साहब जब नए नए बॉम्बे आए थे ना तो गिव अप करके चले गए थे, फिर वापस बॉम्बे आए थे, फिर वापस गिव अप करके जाने वाले थे, तब उनको उनके एक दोस्त ने रोका। एक बार एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने उस दोस्त का जिक्र किया था, सुनिए।
1: दो तीन चार महीने में फिर मेरी हिम्मत टूटने लगी, किराया वगैरह देना भी मुश्किल हो गया था। फिर एक अजनबी शख्स मेरा कोई दोस्त बन गया, वो रेलवे में काम करता था, टिकट चेकर था मेरलैंड स्टेशन पर। उसे मैंने एक दिन कहा कि मुझे दिल्ली का टिकट ले दो, मैं वापस जा रहा हूँ। तो वो पता नहीं बेचारा इतना इम्प्रेस था मुझसे, वो कहता था कि तुम एक दिन ज़रूर गीतकार बनोगे। तो उसने मेरी बड़ी मदद की, इतनी मदद की कि वो मेरा सामान उठा के मुझे अपने घर ले गया बोरीवली, और उस शख्स ने मुझे 6 बरस तक अपने साथ रखा, रहने की जगह दी, खाना वाना भी वही खिलाता था। उनका नाम था क्षेत्रमल, बॉम्बे शहर में और कुछ था नहीं, और जो 2-4 रिश्तेदार थे उन्होंने ज़रा मुँह फेर लिया। अगर वो मेरी मदद नहीं करता तो इस बार भी मुझे फिर कसम खा के वापस जाना पड़ता।
0: कहते हैं ऊपर वाला कई बार जब खुद आपकी मदद करने नहीं आता तो फरिश्ते समान किसी इंसान को भेज देता है। ये दोस्त वही रहे होंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. पुरानी चीज आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: कुछ 6000 गाने लिखे होंगे आनंद बख्शी साहब ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन उनका पहला गाना कौन सा था? एक बार एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था, ये लेट 56-57 की बात होगी।
1: उन दिनों में हर रोज हम घूमते रहते थे, रोज किसी न किसी फिल्म स्टूडियो में जाते थे, जो भी मिल गया उससे मिला। और एक रटा हुआ जुमला था कि मैं गीतकार बनने को आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे। इत्तेफाक से भगवान दादा की कोई फिल्म शुरू होने वाली थी और वो दफ्तर में बैठे हुए कुछ किसी सॉन्ग राइटर का इंतजार कर रहे थे। बड़े अच्छे मौके पर पहुंच गया और मैंने जाकर भगवान दादा से कहा कि मैं गीत लिखता हूँ। उन्होंने फ़ौरन कहा गीत लिखो, तो मैं लिखने बैठ गया। और मुझे याद है कि 2-4 रोज में मैंने उनके 4 गीत लिखे। ना खुश हो गया, मुझे लगा कि मैंने जीत लिया। एक गाना था उसका मुखड़ा ऐसे था कि धरती तेरे लिए तू है, धरती के लिए धरती के लाल ना कर इतने मलाल, तेरी दौलत है तेरे हौसले। ये छोटी सी स्टंट पिक्चर थी तो कुछ खास उससे कामयाबी नहीं मिली।
0: वेल, बख्शी साहब की ये वेल डिजर्व्ड ड्यू कामयाबी 7-8 सालों बाद आई थी। करते हैं उसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद। राइट हियर, मैं हूँ चारू आपके साथ, पुरानी जीन्स पर और मिर्ची।

Mirchi. It's hot. पुरानी चीज आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: आनंद बख्शी साहब ने 1956 से फिल्मों के लिए गाने लिखने शुरू किए थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनके शुरुआती गाने कुछ खास चले नहीं, वो फिल्में भी नहीं चली। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में तब के बारे में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: वही स्ट्रगल चलने लगी, सुबह शाम भाग दौड़, इससे मिलो उससे मिलो। उसके बाद 10 साल मेरे बड़े अपने मिस्टर सुनील दत्त, ये मेरे दोस्त भी हैं और दूसरे रिश्तेदार भी हैं, इनके पास मैं गया तो इन्होंने मुझे एक खत दिया इंट्रोडक्शन का, जस्ट टू मीट मिस्टर राज कपूर। तो राज कपूर साहब के सेक्रेटरी थे हिरन खेड़ा साहब, उनके पास मैं गया। उन्होंने कहा सुनाओ तुम क्या लिख रहा है। तो मेरे पास कोई फिल्मी गीत थे नहीं, 3-4 मुखड़े में लेके आया था, वो मैंने उनको सुनाए और काफी इंतजार किया। रास्ता बड़े बिजी थे, हर उन्होंने मुझे अपनी कार्टी में बुलाया। लेकिन गाने से पहले मुझे हिरन खेड़ा साहब ने कहा कि राज साहब तो तुमसे गाने नहीं लिखवाएंगे, लेकिन मैं अगर कभी प्रोड्यूसर बन गया तो मैं तुमसे गीत जरूर लिखवाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। और देखिए मेरा नसीब कि 2-4 महीने में ही किसी शख्स ने उनको पैसे दे दिए फिल्म बनाने के लिए और उन्होंने बनाई फिल्म मेहंदी लगी मेरे हाथ। उसी मिस्टर हिरन खेड़ा ने एक दूसरी फिल्म बनाई थी जब जब फूल खिले, वो बहुत बड़ी हिट हो गई। उसके बाद फिर मुझे पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा।
0: और इसके बाद से इनकी जो स्ट्रगल थी ये तो जैसे परदेसी हो गई, उससे फिर मुलाकात ही नहीं हो पाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और मिर्ची

0: पुरानी चीज, पुरानी चीज, आनंद बख्शी स्पेशल, चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची, रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी चीज, आनंद बख्शी स्पेशल, चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: आनंद बख्शी साहब क्योंकि शायर नहीं गीतकार थे, फिल्मी गीत लिखते थे, उनको काफी क्रिटिसाइज किया जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन इस सारे क्रिटिसिज्म को उन्होंने जवाब दिया अपने गानों से, डीप थॉटफुल गाने जैसे कि अमर प्रेम के गाने। अच्छा, इसका जो गाना है चिंगारी कोई भड़के, उसके बारे में सुनिए पुराने इंटरव्यू में इन्होंने क्या शेयर किया था।
1: ये गाना मैंने फिल्म के लिए ऐसे लिखा नहीं था, ऐसे अपने लिए लिखा था। मैं उन दिनों में हम लोग गाने लिखते रहते थे कि कौन सा गाना किसे पसंद आ जाए क्या पता। तो शाम को हम अक्सर वहाँ बैठते थे श्रुति सुमन जी के यहाँ, राजेश खन्ना, आर डी बर्मन, मैं। तो हाँ, मैंने ये गाना जब उन्हें सुनाया तो सब लोगों को इतना पसंद आया कि उसका भी से रिकॉर्ड करते हैं और इसकी पिक्चर में निकालते हैं सिचुएशन। और इत्तेफाक से वो गाना बड़ा पॉपुलर हुआ, मैंने भी वो गाना पार्टियों में खूब गाया।
0: बताइए, अक्सर बख्शी साहब को सिचुएशन दी जाती थी गाने लिखने के लिए, ये गाना फिल्म बनाने वालों को इतना पसंद आया कि इसके लिए सिचुएशन निकाली गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: पुराने हिंदी फिल्मी गाने, हर दूसरा गाना आनंद बख्शी साहब ने लिखा होता है, कई बार पहला और तीसरा भी उन्होंने ही लिखा होता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बख्शी साहब को सिचुएशन दो, 7-8 मिनट में वो गाने लिख देते थे। एक बार एक पुराने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था इस बारे में।
1: ये मैं कोशिश तो करता हूँ, कभी बन जाता है कभी नहीं भी बनता।
0: ऐसा ही एक गाना जो फटाफट बन गया था वो था आन मिलो सजना फिल्म का अच्छा तो हम चलते हैं, जिसको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। इस बारे में बख्शी साहब ने क्या कहा था?
1: इन दोनों को कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भी ठीक गाने पगबंदी किए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कॉम्प्लीमेंट दिया कि यहाँ से फिल्म राइटिंग का एक नया दौर शुरू हुआ जिसमें डायलॉग टाइप के गाने भी आते थे।
0: भाई बख्शी साहब को उस टाइम इतनी आलोचना का सामना इसलिए भी करना पड़ता था क्योंकि ये शायर नहीं थे, बस गीतकार थे। तब शायरी को या शायरी बेस्ड जो गाने होते थे उनको ज्यादा बेहतर समझा जाता था। एक बार बख्शी साहब से पूछा गया था कि अदबी शायरी और फिल्मी शायरी दोनों में उनके हिसाब से क्या फर्क है।
1: फिल्मी शायरी में और अदबी शायरी में इतने फर्क है कि उनकी मीटर्स अलग होते हैं। जैसे शायरी के 6 मीटर होते हैं, उनकी बहरें होती हैं, उसी बहर में लोग शायरी करते हैं। फिल्म के गीत में जैसी धुन बनती है, धुन पे लिखना पड़ता है, तो धुन का अपना अलग मीटर होता है
0: और उसी के साथ साथ सिचुएशन भी तो होती है जिसके मुताबिक गाना लिखना पड़ता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: अच्छा तो हम चलते हैं,
3: फिर कब मिलोगे?
2: जब तुम कहोगे
3: जुम्मे रात को।
2: हाँ हाँ आधी रात को।
3: कहाँ?

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी चीज आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: हिंदी फिल्मों के आइकॉनिक सॉन्ग राइटर आनंद बख्शी साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई वैसे तो बख्शी साहब बहुत वर्सेटाइल थे, हर तरह के गाने, हर सिचुएशन पे गाने उन्होंने लिखे हैं, लेकिन एक टाइप था जो उनको काफी पसंद था, वो गाने जिनमें फोक म्यूजिक का टच होता था। सुनिए इस बारे में उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: बचपन से ही फोक गीत काफी सुनता रहा, पढ़ता रहा, क्योंकि मुझे गाने का भी शौक था, इसलिए फोक गीत मेरी शायरी में भी आते गए। और हालांकि मैंने कोई भी फोक सॉन्ग बिल्कुल कॉपी कभी नहीं किया, खुद लिखा है, लेकिन मेरे कुछ गीत इतने पॉपुलर हुए कि लोगों ने कहा कि भाई ये जरूर कोई ना कोई फोक गीत होगा, और आनंद बख्शी ने वहाँ से गीत कॉपी किया होगा। जैसे ये बिंदिया चौंकेगी, इसमें जितनी पंजाबी की लाइनें हैं वो सब मैंने लिखी थी, ये किसी भी फोक गीत का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं इसे एक अपनी दाद समझता हूँ, कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ। ये गीत जो मैंने लिखा वो इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों ने कहना शुरू किया भी ये जरूर कोई फोक गीत होगा।
0: तो देरी किस बात की है, सुन लेते हैं क्लासिक गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: आनंद बख्शी साहब ने 1956 से फिल्मी गाने लिखना शुरू किया और 2002 में उनकी डेथ तक वो गाने ही लिख रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इतने डेकेड्स तक वो रेलेवेंट थे, ऐसा कैसे कर लेते थे? सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मैं पहले लिखता था, वैसे अभी लिखता हूँ। मेरे माइंड में शुरू से ही सिचुएशन की जो डिमांड है उसकी बड़ी अहमियत रही कि गाने वाला कोई बोर्डमैन है या कोई आर्टिस्ट है या कोई शायर है या वर्किंग क्लर्क है या कोई किसान है या कौन है।
0: वैसे तो उनके सारे गानों की मेजर मास अपील रहती थी, लेकिन कुछ गाने थे जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थे। वन ऑफ सच सॉन्ग्स जिसे हम पाथ ब्रेकिंग कह सकते हैं या बाउंड्रीज क्रॉस करने वाला कह सकते हैं, वो है 1986 की नाम फिल्म का चिट्ठी आई है। इसके बारे में सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: उन्होंने मुझे ऐसी सिचुएशन दी, ऐसी जगह दी फिल्म में जिसमे की एक शख्स अपना देश छोड़ के बाहर गया हुआ है, उसे अपने देश की याद आ रही है, भाई याद आ रहा है, माँ की याद आ रही है। तो वो फीलिंग लेके मैंने ये सोचा कि अगर चिट्ठी के हिसाब से इसे लिखा जाएगा तो बहुत कामयाब होगा।
0: कामयाब इज एन अंडरस्टेटमेंट फॉर दिस सॉन्ग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

पुरानी चीज, पुरानी चीज। आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ, चारों के साथ। ओनली ऑन मिर्ची। पुरानी चीज, पुरानी चीज। आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ, चारों के साथ। ओनली ऑन मिर्ची।

0: लेट 50s में जब आनंद बख्शी साहब ने फिल्मों में गाने लिखना शुरू किया तो उनको इतना वार्म वेलकम नहीं मिला था क्योंकि वो शायर नहीं थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इनफैक्ट काफी क्रिटिसिज्म, थोड़ा रूखा बर्ताव भी मिला था, लेकिन कुछ ऐसे सॉन्ग राइटर्स भी थे जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। और उनमें से किन लोगों के काम से वो इम्प्रेस थे, एक बार एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए बख्शी साहब ने क्या शेयर किया था।
1: फिल्मी शायरी में मुझे सबसे ज्यादा जिन्होंने इम्प्रेस किया वो थे डी एन मरहोक, उन्हें यहाँ कहते थे महाकवि। और उसके बाद अपने शैलेंद्र ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। और एक ऐसी शायरी जिसमें अदब भी हो, लिटरेचर भी हो और फिल्मी रंग भी हो, उस टाइप की शायरी अपने साहिर साहब करते थे। उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी और वो उन्होंने हौसला दिया, लोगों से मुझे मिलाया कि भाई ये बहुत अच्छा शायर है, इस पर गीत लिखाओ। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। और शैलेंद्र साहब थे, वो भी मेरी बड़ी तारीफ करते थे। इस तरह से कुछ दोस्त और बन गए, कुछ दोस्तों की मेहरबानी, कुछ ऊपर वाले का करम, अपना सिलसिला वहाँ से चल पड़ा।
0: और हम यहाँ पे चला देते हैं बख्शी साहब का बड़ा अच्छा सा एक गाना, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची। पुरानी जीन्स, पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: भाई यूं तो आनंद बख्शी साहब के हजारों सुपरहिट गाने रहे हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन वो कौन सा गाना था या वो ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिससे उनको ये एहसास हुआ कि भाई हाँ मेरा ये लिखा गाना सुपरहिट हो गया है?
1: मिलन की वक्त की बात है कि मैं अपना फ्रंटियर मेल से आई वाज ट्रैवलिंग टू दिल्ली, तो रास्ते में अचानक एक छोटा सा स्टेशन था जहाँ पे गाड़ी का हल्ट बनी था, गाड़ी खड़ी हो गई। तो वहाँ आधी रात के वक्त कोई फकीर ऐसे इस हथेली से यहाँ से वो कुछ रिदम बजाता था और वो गाना गा रहा था कि सावन का महीना पवन करे शोर। दैट वाज़ अ मोमेंट जब मुझे पता लगा हिट गाना क्या होता है और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा ये गाना हिट हो गया।
0: वैसे एक और गाना था जो इतना पॉपुलर हुआ कि जिस हीरोइन पर वो पिक्चराइज था, उसकी वो डेब्यू फिल्म थी, उसका नाम उसी गाने पे पड़ गया था।
2: उसी गाने से उसे जीने जमाने के लोग कहने लगे थे शी इज दम और दम गर्ल।
0: आनंद बख्शी साहब के न जाने ऐसे कितने गाने हैं जिन्होंने पता नहीं कितने एक्टर्स को उनकी पहचान दी। हम उन एक्टर्स को शायद उन गानों की वजह से पहचानते हैं जो लिखे बख्शी साहब ने। कोई ऐसी फिल्मी सिचुएशन नहीं रही है जिसको बख्शी साहब ने बख्शा हो, सब पे गाने लिख दिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: भाई कुछ फिल्में ना आपके लिए दाल चावल वाला कंफर्ट लेके आती है।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप। एंड यस, अगर आप नो एंट्री के फैन रहे हैं तो आपको पता होगा कि दाल चावल के अलावा लोग जो हैं वो बिरयानी की तलाश में भी बाहर निकलते हैं। लेकिन फिलहाल तो मैं बिरयानी की बात कर ही नहीं रही, मैं तो दाल चावल अपने कंफर्ट फूड की बात कर रही हूँ यार, जिससे मैं पर्सनली कभी बोर नहीं हो सकती। क्योंकि मतलब दिस इज समथिंग दैट यू कांट सर्वाइव विदाउट। आप डेली बिरयानी खाकर तो मजा नहीं कर सकते ना, पेट तो कभी तो खराब हो ही जाएगा आपका। ठीक वैसे ही कुछ फिल्में होती हैं जो आपके लिए दाल चावल वाला कंफर्ट दे जाती हैं। आप उन फिल्मों से कभी बोर नहीं हो सकते। इनफैक्ट आप किसी भी मूड में हो, किसी भी जोन में हो, बस वो फिल्म लगाएंगे और एक बोलते ना कि यू गो बैक टू योर होम, मतलब वैसी वाली फीलिंग आ जाती है। तो आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भाई आपके लिए वो कंफर्ट फिल्म कौन सी है जिसको आप कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। But all of that in a while, till then you stay tuned to Mirchi. मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।